आवाज की दुनिया के दोस्तों, महक में आज 31 मई के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आप रेडियो पर तो सुन ही सकते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन कंप्यूटर पे आप सुन सकते हैं www.rrr.org.au पर जाकर लिसन ऑनलाइन प्ले बटन दबाकर। इसी तरह से अपने मोबाइल पर भी, और मोबाइल पर सुनने का एक और तरीका है, अपने फेवरेट पसंदीदा ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए कम्युनिटी प्लस ऐप और उस पे ढूंढिए 2RRR और सुनिए जहां भी आप अपने दोस्त मोबाइल के साथ हों अपना मनपसंद कार्यक्रम महक।

आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बातें पेश करेंगे डायरेक्टर राज खोसला के जीवन से, जिन्होंने हमें सुपरहिट फिल्में दी जैसे कि CID, काला पानी, 16 साल, एक मुसाफिर, एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया, दो बदन, चिराग, दो रास्ते और बहुत सी फिल्में। और इन फिल्मों के साथ उन्होंने दिए इन फिल्मों के सुपरहिट्स गाने, जिन्हें हम आपके लिए पेश करेंगे अगले 2 घंटे के लिए। और अपनी पसंद हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, 02 नंबर है 02 9816 2777, 02 9816 2777।

राज खोसला जी, जिनका जन्म हुआ 31 मई 1925 को राहों में, राहों जो है पंजाब में है, होशियारपुर के पास है और बहुत ही उस इलाके में मशहूर जगह है राहों, और एक तरह से सड़कों का मिलन है। यहाँ से सड़कें हर तरफ जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, लुधियाना जाती हैं और अनेकों जगह हो जाती हैं। तो ये है राहों, इसीलिए शायद इसका नाम पड़ा राहों, और यहीं पर जन्म हुआ 31 मई 1925 को राज खोसला जी का। वो एक शिक्षित, जी हाँ, शिक्षित मतलब उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली थी। और ट्रेनिंग किस बात की ली थी? उन्होंने ट्रेनिंग ली थी गाने की, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी शास्त्रीय संगीत की, और उन्होंने इस ट्रेनिंग के साथ बॉम्बे आकर काम ढूंढना शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो पर तो वो पहले ही गाते थे और क्लासिकल सिंगर होने के नाते बहुत मशहूर भी थे, लेकिन जब मुंबई आए या बॉम्बे आए, उन दिनों में तो बॉम्बे था, तो देवानंद साहब से मिले। देवानंद साहब ने उनको देखा, परखा और गुरुदत्त जी के असिस्टेंट का काम दे दिया, कहा तुम ये काम देखो, उसके बाद बात करेंगे। और जल्द ही उन्होंने डायरेक्टर का काम भी दे दिया। फिल्म थी CID, और CID का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ। वही हुआ जो देवानंद साहब को पहले से ही पता था, और वो हुआ कि पिक्चर तो सुपर हिट हुई ही, साथ में सुपर हिट हुए राज खोसला जी एक डायरेक्टर के तौर पर, और क्या मशहूर हुए, उन्होंने अपनी धाक जमा दी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर के रूप में। और गुरुदत्त जी ने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी, और वहीदा रहमान जी को

0: तो ये था बहुत ही प्यारा गाना, और अगला गाना जो है वो है फिल्म काला पानी से,
1: और
0: काला पानी फिल्म जो थी वो भी देवानंद साहब की थी, साथ में थी उनके मधुबाला जी, और बहुत ही प्यारी ये फिल्म थी और बहुत ही प्यारा ये गाना था। तो पेश है आपके लिए फिल्म काला पानी का ये बेहतरीन गाना, अच्छा जी मैं हारी।

अच्छा, और राज खोसला साहब एक एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर भी थे, यानी कि उनको एक खड़ी हुई अच्छी बनी हुई लाइन पर फिल्म बनाना मंजूर नहीं था। वो सोचते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि फिल्म बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग हो, और ऐसी ही एक फिल्म उन्होंने बनाई और फिल्म का नाम था 16 साल। कहानी थी एक ऐसी युवती की जो अपने प्रेमी के साथ शादी से एक दिन पहले घर से भाग जाती है। एक जर्नलिस्ट जिसका रोल देव आनंद साहब ने किया था, वो जिसका कैरेक्टर जैसे मैंने बताया देव आनंद साहब ने निभाया था, कैसे उस लड़की को लड़की के पिता के जागने से पहले ही घर पहुंचा देता है और उसकी शादी भी बचा लेता है। तो आइए चलें इस अगले गाने की ओर। फिल्म है 16 साल और ये गाना फिल्माया गया था देव आनंद साहब पर।

और अब जो गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और आपके लिए पेश कर रहा हूँ वो भी एक यूं कहिए बहुत ही एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी और फिल्म थी बम्बई का बाबू। और फिल्म बम्बई का बाबू की कहानी आम फिल्मों से उस समय की आम फिल्मों से हटकर थी और कहानी थी एक कातिल की जिसने कत्ल किया है और जिसका रोल देव आनंद ने किया है, जो कत्ल हुए मारे गए व्यक्ति के परिवार में जाकर रहने लगता है और जैसे कि उसके बेटे जैसा ही हो और उसके बेटे के सारे फर्ज भी निभाता है, उसकी बहन की शादी भी करता है और फिर परिवार की बेटी से उसे प्रेम हो जाता है। ये है कहानी देवानंद साहब की फिल्म और राज खोसला जी की डायरेक्टेड फिल्म बम्बई का बाबू की, और इसी का गाना पसंद किया है किशोर ने और किशोर की पसंद पेश है आपके लिए, और ये है फिल्म बम्बई का बाबू। और अपनी पसंद हम तक पहुंचाना चाहें बहुत ही आसान है, 02-9816-2777 पे फ़ोन कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गाना आप तक लाने की।

0: 2:22 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का, कहीं चाहिएगा नहीं। संदेशों के बाद राज खोसला साहब की फिल्मों के गाने लेकर फिर हाजिर होऊंगा महक 2RRR 88.5 FM पर। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का। नंबर है 02981622777।
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsored the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: Have you thought about writing your memoir? Harvard University guest lecturer and author Edward H. Carpenter can help you turn your experience into story. Join him at Ride Library Tuesday, June 30 for a 2-hour practical and engaging workshop. Learn about structure, voice, memory, and the balance between personal truth and context. The session is suitable for beginners as well as those who have already started writing. Details, 9952 8352.
4: Down Memory Lane, bringing the first half of the 20th century to your ears. Tune in or listen online 10 until midday every Monday morning for great music from a bygone era. You might be surprised at how familiar it all sounds. Don't miss the fun. 10 until midday here on 2RRR 88.5 FM, your local sound.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर। आज राज खोसला जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में, और अगला गाना एक फरमाइशी गाना है और ये गाना है जॉय मुखर्जी और साधना की फिल्म, बहुत ही एक प्यारी फिल्म थी एक मुसाफिर एक हसीना से, जिसके सारे ही गाने बहुत ही पॉपुलर हुए थे। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे तो एक दिन प्यार हो जाएगा और मैं प्यार कर रही हूं और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप मेरी जिंदगी में आए। और यही है ये फरमाइशी गाना। तो पेश है आपके लिए ये गाना जो है हमारे फिल्मी दुनिया के बेहतरीन, क्या सबसे शायद बेहतर गाने वालों में से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

और अब पारी है कुछ टिकट्स जीतने की, और ये टिकट्स हैं, शो हो रहा है गाता रहे मेरा दिल सीजन 2, 4 जुलाई रीजेंसी सेंटर ओबन में।

जो आप में से दो लकी लिसनर्स जीत सकते हैं। तो दो लकी लिसनर्स को एक एक टिकट जीतने का मौका है ये गाता रहे मेरा दिल कार्यक्रम का, जो है 4 जुलाई रीजेंसी थिएटर ओबन में शाम 6:30 बजे। आपको बताना है गाता रहे मेरा दिल गाना किस फिल्म से है, गाता रहे मेरा दिल गाना किस फिल्म से है। नंबर है हमारा यहाँ स्टूडियो में 02981622777, 02981622777, और आपके नाम जाएंगे ड्रॉ में और दो लकी लिसनर्स को मिलेंगे एक एक टिकट कार्यक्रम गाता रहे मेरा दिल के। तो सोचिए और जवाब दीजिए गाता रहे मेरा दिल किस फिल्म से है। और हम आपको ये बता देते हैं कि ये अगला गाना किस फिल्म से है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में 26 मई को क्वाड देशों की मीटिंग हुई, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए ने इंडो पैसिफिक में समुद्री आवाजाही पर चर्चा की। चीन की इस क्षेत्र में अपना दबदबा बताने के लगातार कोशिश पर भी बातचीत की क्वाड देशों ने। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरे में डालने, बल प्रयोग या दबाव बनाने वाली एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान में है आप जानते हैं, और ईरान द्वारा बंद किया गया है, तो उससे पूरे संसार पर छाए संकट के मद्देनज़र इंडो पैसिफिक में समुद्री जहाज़ों का फ्री आना जाना और महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसके लिए ये बातचीत हुई क्वाड देशों के इस जो है मीटिंग में। और अब अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है फिल्म सीआईडी का, और फिल्म सीआईडी के इस गाने को पसंद किया है शकुंतला ने, गाने के बोल लेके पहला पहला प्यार। और इस गाने की एक बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है कि डायरेक्टर राज खोसला ने इस गाने की शूटिंग में गाना तो शूट किया ही, जैसा आप जानते ही हैं दो स्ट्रीट सिंगर्स हैं एक मेल एक फीमेल, और ये गाना बजाते हैं, हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, लड़की डांस करती है वगैरह वगैरह। लेकिन देवानंद साहब ने कहा कि इस गाने में मेरा क्या काम है, तो राज खोसला ने कहा तुम्हें सिर्फ हैंडसम दिखना है और सिर्फ चलते जाना है। तो देवानंद साहब थोड़े अचंभे में रहे कि मुझे सिर्फ चलना है इस गाने में, तो राज खोसला ने कहा जी हाँ आपको इस गाने में केवल चलना है और हैंडसम दिखना है। तो पेश है आपके लिए

0: 2:43 तरतालीस मिनट हुए हैं 2:43 स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का और बहुत ही अच्छा समय है हमें फोन करने का 02-9816-2777 पे और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने का और साथ ही जो आज की गिव अवे पहेली है उसमें भाग लेने का और ये है पहेली गाता रहे मेरा दिल कार्यक्रम जो 4 जुलाई को हो रहा है उसकी 2 टिकटों के लिए और आपको बताना है गाता रहे मेरा दिल किस फिल्म का गाना है और आपका नाम अगर आपका जवाब सही हुआ तो जाएगा ड्रॉ में और 2 लकी लिसनर्स को मिलेंगे एक एक टिकट
1: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
2: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladesville. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
1: Lady Anne Funerals, where every family is special.
3: Creating healthy bladder and bowel habits are important for your overall health. A free information session on healthy bladder and bowel habits will be held at Ryde Library, 1:30 to 2:30 p.m. Thursday, June 18. Having a healthy diet and lifestyle can help prevent problems like incontinence. Find out what else you can do for good bladder and bowel health. Healthy Bladder and Bowel Habits sessions are delivered in partnership with the Incontinence Foundation of Australia. Details 9952 8352.
4: Don't you just love live radio?
5: Accidentally. Accidentally. Accidentally, Curly's Treat. Friday evenings, 9 to 11 p.m. on 2RRR, hashtag live on 88.5.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर आज 31 मई के इस कार्यक्रम में जिसमें आपके लिए पेश कर रहा हूं राज खोसला जी की फिल्मों के गाने वो डायरेक्टर जिसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी हमारे लिए और उन फिल्मों के हिट गाने दिए और अगला गाना जो है वो है माही की पसंद का और माही ने पसंद किया है फिल्म वो कौन थी का गाना लता जी की आवाज़ में जो फिल्माया गया था साधना पर और मनोज कुमार जी पर और वो कौन थी के तकरीबन सारे गाने बहुत ही अच्छे थे और लग जा गले के फिर ये रात हो ना हो आप क्यों रोए नैना बरसें रिमझिम रिमझिम छोड़ कर तेरे प्यार का दामन बहुत ही प्यारा गाना था और ये गाना है लग जा गले

बहुत ही एक दिल को छूने वाला गाना और इस गाने के बोल भी दिल को छूने वाले और को बता दूं कि दैनिक ट्रिब्यून में 27 मई को समाचार आया कि कनाडा के एक जबरन वसूली गैंग से संबंधित 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। ये गैंग कनाडा के ब्रैम्पटन, मिसिसागा, कैलिडोन और ब्रिटिश कोलंबिया में साउथ एशियन जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह वगैरह उस एरिया के जो देश हैं उनके व्यापारियों और समुदाय यानी कम्युनिटी के सदस्यों को निशाना बनाते थे और जबरन वसूली करते थे। सभी गिरफ्तार लोग भारतीय मूल के हैं और पंजाब से हैं। गिरोह का नाम फोर ब्रदर्स बताया जाता है, फोर ब्रदर्स यानी भाइयों के लिए। अरे भाई, भाइयों के लिए काम करना है तो कोई अच्छा काम करो, ऐसे काम करने की क्या ज़रूरत है। अगला गाना एक फरमाइशी गाना है और इस गाने की जिन्होंने फरमाइश की है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, इसका हम सम्मान करते हैं। तो पेश है आपके लिए फिल्म दो बदन 1966, मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहतरीन आवाज़। आशा पारेख जी थी इस फिल्म में और मनोज कुमार जी थे हीरो और डायरेक्टर कौन था आप समझ ही गए, राज खोसला।

बहुत ही प्यारा गाना. और अगला गाना जो है वो भी एक फरमाइशी गाना है, और ये फरमाइशी गाना है फिल्म काला बाजार से. देवानंद साहब की फिल्म थी, लेकिन डायरेक्ट किया था किसने? हाँ, आप समझ ही गए, राज खोसला साहब ने. और इसकी फरमाइश की है डॉक्टर पारिक ने, और गाने के बोल हैं, अपनी तो हर आह एक तूफान है.

0: 3:03 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का. संदेशों के बाद राज खोसला जी की फिल्मों के गानों का कार्यक्रम जारी रहेगा महक 2RRR 88.5 FM पर. और आप सुन रहे हैं महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक. पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल. अब बहुत ही अच्छा समय है पहेली का जवाब देने के लिए कि गाता रहे मेरा दिल किस फिल्म का गाना है और सही जवाब पर आपका नाम जाएगा ड्रॉ में. आपको मौका मिलेगा एक टिकट जीतने के लिए 2 लकी लिसनर्स को गाता रहे मेरा दिल 4 जुलाई के इस कार्यक्रम में के लिए जो है ओबन में रीजेंसी सेंटर में.
1: हेलो, आई एम कैरन लैंग, डायरेक्टर ऑफ लेडी एंड फ्यूनरल्स. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
2: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladeswood. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
1: Lady Anne Funerals, where every family is special.
3: Creating healthy bladder and bowel habits are important for your overall health. A free information session on healthy bladder and bowel habits will be held at Ryde Library, 1:30 to 2:30 p.m. Thursday, June 18. Having a healthy diet and lifestyle can help prevent problems like incontinence. Find out what else you can do for good bladder and bowel health. Healthy Bladder and Bowel Habits sessions are delivered in partnership with the Incontinence Foundation of Australia. Details 9952 8352.
4: Don't you just love live radio?
5: Accidentally. Accidentally. Accidentally. Curly's Treat. Friday evenings, 9 to 11pm on 2RRR, hashtag live on 88.5.
6: Me.
7: Mates. Me Mates Demolition, where never easy is made easy.
6: With a one-stop solution for all your demolition needs, whether residential or commercial. Specialising in tight access demolition and bonded asbestos removal. Fully licensed with over 20 years experience. 2RRR sponsor, Me Mates Demolition. On time, on budget and proudly supporting sustainability through Me Mates Recycled Warehouse. For further inquiries, go to memates.demolition.com.au.
7: Me Mates Demolition, where never easy is made easy.
6: Mate!
8: Emergencies can strike at any time, without warning. Co-created by the Australian Red Cross and the NRMA, the Get Prepared app is a simple way to take control of an emergency, and it's completely free. Download the Get Prepared app today, and you're in business. Your business to be prepared. For more information and to download the app, visit redcross.org.au/prepare.
9: Tune into your local sound to the world. That's 2RRR. Ryde Regional Radio. Anywhere. Stream us live on iHeart, TuneIn. And Community Radio Plus. You can even stream directly from our website, 2RRR.org.au.
10: Community Radio 2RRR has dedicated itself to working with youth through the broadcasting medium and with assisting adults who are on their rehabilitation journey. And this would not be possible without the support of the Bendigo Community Bank, North Ryde. Support the bank that supports your community. Station sponsor Bendigo Community Bank, North Ryde on Cox's Road.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर. आज राज खोसला जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में और पहली भी चारू है जारी है और पहली ये है कि कार्यक्रम हो रहा है गाता रहे मेरा दिल 4 जुलाई को शाम 6:30 बजे रीजेंसी सेंटर ओबन में और उसकी 2 टिकटें हैं ड्रॉ में और आपका नाम ड्रॉ में जाने के लिए आपको बताना है गाता रहे मेरा दिल किस फिल्म का गाना है और आपका नाम जाएगा ड्रॉ में और 2 लकी लिसनर्स को एक एक टिकट जीतने का मौका है। तो आइए चलें अगले गाने की ओर छोड़कर प्यार का दामन ये बता दे कि हम किधर जाएं। महेंद्र कपूर लता जी फिल्म वो कौन थी और फरमाइश की है लता ने और आइए चलें इस गाने की ओर और हमारा नंबर है 02981622777।

टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई को कार्यक्रम जो समाचार था, समाचार आए थे, उसमें समाचार आया ये जो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसको बताने से पहले आपको बता दूँ, इस समाचार में हिंसा, हत्या, प्रताड़ना की बातें हैं। आप अगर उन्हें न सुनना चाहें तो आवाज़ धीमी कर सकते हैं, और ख़ास तौर से अगर आपके आसपास कोई बच्चे हों उनको बिल्कुल न सुनने दें। समाचार ये है कि भारत में दहेज को गैर कानूनी करार दिया गया 1961 में, और आज 65 साल बाद भी दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए मांग और दहेज के कारण जवान लड़कियों की हत्याएं का कारण बन रहा है। समाज में देश के कानून को मानने या न मानने कहा जाए और अनदेखा करने का क्या कारण है? क्यों समाज हमारा इस बात को नहीं मानता कि जो कानून है उसे मानना चाहिए और कानून के मुताबिक चलना चाहिए? सरकार क्यों कानून को सख्ती से लागू नहीं कर पा रही है? पिछले 2 हफ्तों में ही कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से दहेज उत्पीड़न के, बहुओं की हत्याओं के और कथित आत्महत्याओं के समाचार आए हैं। कर्नाटक का जो केस है उसमें 24 साल की दीपिका कथित तौर पर अपने ही घर के टेरेस से नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर गिरने के चोटों के अलावा और कई चोटों के निशान थे। ससुराल वालों ने फॉर्चूना कार की मांग की थी, इससे पहले अन्य मांगे भी की थी। ग्वालियर की पलक रजक 21 साल की कई बार अपने माता पिता को बता चुकी थी कि ससुराल में उसे दहेज के नाम पर पीटा जाता है, तंग किया जाता है, और फिर एक दिन उसकी मृत्यु के समाचार आए। उड़ीसा के जयपुर से 21 साल की प्रमिला दास के पिता की शिकायत पर उसकी लाश को जल्दी से एक कब्र में दबाने के बाद कब्र से निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया और पता चला कि उसकी हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की 19 साल की पुष्पेंद्री देवी ने रोते हुए पिता को फोन किया, पापा वो मुझे मार देंगे। उसी रात उसकी आत्महत्या की खबर आई। अपने ही कमरे में उसने रस्सी से, पंखे से अपने आप को झुला लिया, ऐसा कहा उसके ससुराल वालों ने, लेकिन असली बात पर पुलिस तहकीकात कर रही है। ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए की मांग भी रखी थी, और इस दिल दहलाने वाली वारदाताओं के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन सरकार के कानून बनाने के बावजूद समाज जो है हमारा वो क्यों नहीं जागता? और समाज के बड़े जन जो अपने आप को समाज के नेता कहते हैं, समाज के आगू कहते हैं, वो क्यों नहीं मिसाल कायम करते दहेज के खिलाफ? सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला गाना जो है बहुत ही प्यारा गाना है, और इस गाने को मैंने लिया है, मैंने नहीं, फरमाइश की है किसी ने फिल्म मेरा साया से, और फरमाइश की है आशा ने। इसे सुनते हुए आप भी पहेली में भाग ले सकते हैं। गाता रहे मेरा दिल किस फिल्म का गाना है, और कार्यक्रम हो रहा है 4 जुलाई को शाम 6:30 बजे ओबन के रीजेंसी सेंटर में, और अब सबके सही जवाब जाएंगे ड्रॉ में, और 2 लकी लिसनर्स को एक एक टिकट जीतने का मौका है इस कार्यक्रम की।

बहुत ही प्यारा गाना और इस गाने को जैसा मैंने बताया एक ये फरमाइशी गाना था और अगला गाना जो है उसको सुनाने से पहले एक समाचार आप तक लाना चाहता हूँ और समाचार ये है कि नवभारत टाइम्स में ये आया 27 मई को बिहार में पांडुलिपियों जो हाथ से लिखी गई होती हैं पांडुलिपियों की खोज आजकल जोरों पर है। कुछ दुर्लभ पांडुलिपियां जो मिली हैं उनमें शामिल हैं महाबोधि मंदिर में 1956 में दलाई लामा की लाई 101 पांडुलिपियां। आपको मालूम ही होगा तिब्बत छोड़कर दलाई लामा 1956 में भारत आ गए थे और पंजाब में रह रहे हैं धर्मशाला में। तो महाबोधि मंदिर में 1956 में दलाई लामा की लाई हुई 101 पांडुलिपियां हैं। नवादा जो एक जगह है बिहार में उसमें दुर्लभ हाथ से लिखा गुरु ग्रंथ साहब मिला है। बेतिया से राजकुमार शुक्ला की डायरी मिली है जिसमें महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का विस्तार से जिक्र है। बिहार शरीफ से अमीर खुसरो की पांडुलिपि मिली है। औरंगाबाद से 1200 साल पुरानी हाथ से लिखी हुई कुरान शरीफ मिली है। 450 साल पुरानी जहांगीर के समय की 1181 सफ़ों की पेजेस की किताब तरफातुल फुकहा मिली है। चंपानगर दिगंबर जैन मंदिर से 9वीं सदी की यानी कॉमन एरा के 800 साल 8वीं सदी की 9वीं सदी की जो 800 साल जो 801 से 900 तक जो साल थे उसकी एक आचार्य जिन सेन की रची पुस्तक मिली है भगवान आदिनाथ पुराण। जी हाँ, भारत से ये पुरानी चीज़ों का जो की जो खोज है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है बिहार में आजकल। और अब दो बदन फिल्म का गाना है जिसे पसंद किया है शांति ने और इसे सुनते हुए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 02-9816-2777 पे और पहेली में भाग ले सकते हैं बताकर कि गाता रहे मेरा दिल किस फिल्म का गाना है और आपका नाम जाएगा ड्रॉ में और दो लकी लिसनर्स को एक एक टिकट जीतने का मौका मिलेगा गाता रहे मेरा दिल कार्यक्रम का जो 4 जुलाई को शाम 6:30 बजे ओबन में रीजेंसी सेंटर में होगा।

0: 3:28 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब बहुत ही अच्छा समय है संदेशों के चलते अपनी बात हम तक पहुंचाने का और बताने का कि आप का सही जवाब क्या है आज की पहेली में गाता रहे मेरा दिल किस फिल्म का गाना है और आपका नाम जाएगा ड्रॉ में दो टिकटों के लिए गाता रहे मेरा दिल कार्यक्रम 4 जुलाई शाम 6:30 रीजेंसी सेंटर ओबन तो आइए चलें संदेशों की ओर और हमारा नंबर है 02981627 02981627
1: Where else do you get great dining with everyday specials? At the North Ryde RSL, that's where. With the Riverviews Bar and Dining, the Marble Bar and Cafe, the Green Bar, the Downstairs Bar, and the House of Tong. And not forgetting the free live entertainment every Friday and Saturday nights. Plus, you can catch top starring acts in the auditorium. It's the North Ryde RSL, where members enjoy regular specials, giveaways, and win great prizes. Station sponsor, the North Ryde RSL on Pittwater Road. More than a club, it's your community.
2: Hey kids, how would you like to become a superhero? If you're at least 10 years old, you don't have to wait any longer because your City of Ryde's Library's July school holiday program is out now and one of its activities is to give you the chance to unlock your creativity in its superhero drama workshop. It's on Tuesday the 7th of July from 10:30am to 12 noon and your base will be in West Ryde's Library, 2 Graff Avenue, West Ryde. So, let your adventure begin. Book today through Eventbrite before all the superhero power bases have gone. For more details, search Superhero Drama Workshop or telephone 9952 8376.
3: Hi there, I'm John Lee. Join us on Tuesday Arvo from 2 to 4 and Saturday mornings from 6 to 8 a.m. and experience the sounds of country in the Electric Barnyard. The place to be is on 2RRR 88.5 FM. Oh yeah, you gotta go country.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज राज खोसला जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है फिल्म मेरा गांव मेरा देश फिल्म से और इसकी पसंद इसको इसकी फरमाइश की है सुशील ने इसे सुनते हुए 02981627 हमारा नंबर यहां स्टूडियो में मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए धर्मेंद्र जी विनोद खन्ना जी थे इस फिल्म में और डायरेक्ट की थी राज खोसला साहब ने
4: पंजों को छोड़ दो हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है सुना था डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं और फिर तुम तो ठाकुर हो तुम्हें अपनी जबान का पास होना चाहिए कहां का ठाकुर कैसी जबान तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है जब्बर सिंह ने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना
5: देख ठाकुर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ सुलूक कर लो इस बेचारी से तुम्हारा क्या बैर है
4: बैर इससे नहीं है इसकी जालिम जवानी से है ये रंग ये रूप ये जोगन तुम्हारी कसम ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है

घबराओ नहीं, तेरे को मारना होता तो जब्बर सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। तेरे लिए मैंने ऐसी मौत सोची है जिसे सुनकर सारा इलाका

फरहान अख्तर डॉन 3 बना रहे थे. फरहान अख्तर आप जानते हैं एक्टर भी रहे हैं और बड़े अच्छे वो एक डायरेक्टर भी बन गए हैं. तो वो डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं डॉन 3. रणवीर सिंह को डॉन के रोल के लिए चुना गया. 2 साल के बाद रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ दी. फरहान अख्तर ने अपने पार्टनर रितेश सिद्धवानी के साथ इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में इस बात की शिकायत की. एसोसिएशन ने केस को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज को भेज दिया. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने सोमवार 25 मई को कहा कि उसके 4 लाख मेंबर्स में से कोई भी रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा. और अब देखना है कि होता क्या है. लेकिन फिल्मों की खबरें आपको बता दूं, सनी देओल की आने वाली फिल्म है लाहौर 1947, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है और नाम रखा गया है बटवारा 1947. उम्मीद है 13 अगस्त 2026 को ये फिल्म रिलीज होगी. डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी. सलमान खान की अगली फिल्म है मातृभूमि. और कॉकटेल 2 आने वाली फिल्म है कृति सेनन, शाहिद कपूर और रश्मिका मंधाना की. रिलीज 19 जून. और 12 जून को दिलजीत दोसांझ की फिल्म मैं वापस आऊँगा और कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता रिलीज हो रही हैं. मैं वापस आऊँगा ऐसी फिल्म है जो देश के बंटवारे के समय की एक लव स्टोरी है और भारत भाग्य विधाता 2008 के मुंबई हमलों के दौरान अस्पतालों की कहानी है. 5 जून को बॉबी देओल की बंदर और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है, है जवानी तो इश्क होना है रिलीज हो रही हैं. हेमा मालिनी ने सिने जगत में 60 साल पूरे किए और पिछले सप्ताह आया समाचार कि अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए गलत साबित हुआ. अमिताभ बच्चन ने खुद अपने ब्लॉग में बताया कि वो केवल रूटीन चेकअप के लिए गए थे और हम केवल आपकी फरमाइश रूटीनली पेश करते हैं ताकि ये कार्यक्रम दिलचस्प बना रहे और आपकी पसंद आपको सुनने को मिले और कार्यक्रम में आपकी भी और सुनने वालों की भी दिलचस्पी बढ़ी रहे. और अगला गाना जो है वो राज खोसला जी की अंतिम फिल्मों में से एक फिल्म थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की. बहुत ही प्यारी फिल्म थी और इसको भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म कहा जा सकता है क्योंकि इस फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में पति की प्रेमिका और उनकी पत्नी के बीच के रिश्तों की कहानी है. हालांकि पत्नी के नज़रिए से ये फिल्म बनाई गई, फिल्म की कहानी इसी तरह से थी, लेकिन प्रेमिका या सौतन कहिए उसके लिए दर्शकों के मन में बहुत सहानुभूति जागी इस फिल्म को देखने के बाद. तो पेश है राज खोसला जी की एक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म मैं तुझसे तेरे आंगन की. फिल्म का ये बेहतरीन गाना और इसे पसंद किया है सुधा.

मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म के लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया राज खोसला साहब को। और इंडिया पोस्ट ने 3 मई 2013 को उनके सम्मान में 5 रुपए का एक डाक टिकट निकाला। तो आइए चलें बातें कुछ इधर की कुछ उधर की हमारी जन्मभूमि की। आईपीएल के मुकाबले पूरे हो गए हैं, फाइनल तय हो गया है। कल 1 जून को आईपीएल 2026 का फाइनल मैच होगा अहमदाबाद में लोकल टाइम शाम 7:30 बजे और सिडनी टाइम रात के 12 बजे। टीम्स हैं फाइनल में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोनों टीमों को हमारी शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र की एक शादी में दूल्हा जो इंश्योरेंस एजेंट है उसने एक ऐसा काम किया जो शायद कभी किसी ने नहीं किया हो। उसने शादी में आए 1300 मेहमानों की एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा दी। अक्सर एनआरआई पुरुषों की कहानी होती है कि वो नकली शादी करते हैं, पैसों की मांग करते हैं वगैरह वगैरह। और अब कहानी आई है कि मलेरकोटला पंजाब का जो एक शहर है उसकी सिमरनजीत कौर जो कनाडा में रहती है उसने शादी की पंजाब आकर तेजप्रीत से 30 लाख रुपए मांगे उसने उसे परमानेंट रेजिडेंसी पीआर दिलवाने के लिए। लेकिन पता चला कि उसके पास खुद की पीआर नहीं है कनाडा की, तो उसने 10 लाख रुपए और मांग लिए कि भाई मुझे 10 लाख दे दो ताकि मैं अपनी पीआर करवा सकूं। अब पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दायर किया है उसके खिलाफ। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को ESPN क्रिक इन्फो को 21वीं सदी का ग्रेटेस्ट बैट्समैन चुना गया है मेंस इंटरनेशनल में। जसपाल बुमराह को ग्रेटेस्ट T20 बाउलर, अफ्रीका के जैक कालिस को बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द सेंचुरी। 30 मई 2026 को राजस्थान के चुरू में रेत का तूफान, रेत का बवंडर ऐसा आया कि दिन में ही अंधेरा छा गया। हिंदू मंदिरों में पैसे लेकर VIP दर्शनों को मद्रास हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण बताया है, कहा है गुरुद्वारों मस्जिदों और चर्चेज में तो ऐसा नहीं होता और भगवान मंदिरों में मंत्रियों का इंतजार नहीं करते बैठे, उनके समक्ष सभी बराबर हैं और हमारे लिए आपकी फरमाइश बिल्कुल बराबर है सबकी। और ऐसा ही है ये अगला गाना और ये है फिल्म दोस्ताना का गाना। फिल्म दोस्ताना जो है वो उनकी अंतिम फिल्मों में से एक थी और काफ़ी सफल रही। अमिताभ बच्चन जी थे, जीनत अमान थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन उसके बाद उनकी फ्लॉप फिल्मों का दौर चला। और फिर क्या हुआ इस गाने के बाद, तो पेश है ये बेहतरीन गाना महक 2RRR 88.5 FM पर और इसको पसंद किया है राज ने।

और अब पेश हैं आपके लिए हमारी कर्म भूमि की कुछ बातें। और ये बात जो है थोड़ी दुख भरी है, हुई टिन न्यूएन और उनकी पत्नी हुओंग न्यूएन को नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक से प्रॉपर्टी फ्रॉड करके $40 मिलियन के लोन लेकर उसका गबन करना, उसके लिए पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया है। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के अनुसार लेबर गवर्नमेंट की कैपिटल गेन्स टैक्स का मीडिया में जोर शोर से स्टार्टअप्स के लिए खराब बताया गया है। फ्रैंक ग्रीफ खुद बड़े विवाद में फंस गया है क्योंकि ये तो उसने कह दिया कि ये स्टार्टअप्स के लिए ख़राब है, लेकिन अपनी बात नहीं बताई। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के अनुसार उसने अपने स्टार्टअप के 350 एम्प्लॉयज़ को स्टार्टअप्स में केवल 10 एम्प्लॉयज़ को शेयर दिया, जबकि आमतौर से सभी एम्प्लॉयज़ को शेयर दिया जाता है। नतीजा $180 मिलियन में जब उसने अपने बिजनेस को बेचा तो एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं मिला। और सिडनी के स्टोर सुपर ड्राइव पर 3 लोग शॉपिंग करने गए, उनमें से 2 नॉन एबोरिजिनी, 1 एबोरिजिनी, और उनके साथ स्टाफ ने जो बर्ताव किया उससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट का केस बना दिया है इन तीनों ने, और स्टोर में उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया गया, ऐसा कहा उन्होंने। राइट काउंसिल ने ईस्टवुड को एक ईस्टवुड आप जानती हैं, राइट काउंसिल में एक सबब है ईस्टवुड, उसमें एक क्षेत्र को रात 2 घंटे तक के लिए और छूट दे दी है खुली रहने के लिए, रेस्टोरेंट्स वगैरह को। और केंद्र सरकार चाहती है कि नाइट लाइफ केवल किंग्स क्रॉस तक सीमित ना रहे, इनमें 2012 से शुरू नाइट मार्केट्स को भी शामिल किया गया है ईस्टवुड में। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पंछी है मैगपाई, आप जानते हैं वो काले और सफ़ेद रंग वाली पंछी, जी हाँ वही जो आपने अंडे देने के दिनों में इंसानों को चोंच सिर पर चोंच मारते दिखते हैं और तंग करते हैं। दूसरे नंबर पर है रेनबो लॉरीकीट, तीसरे नंबर पर है मैना जो आप जानती हैं बहुत देखी जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर भी मचाती है, लेकिन हम शोर नहीं मचाते, हम केवल आपकी बात सुनते हैं। और अहल्याबाई होलकर महिलाओं के लिए अथक काम करने वाली होलकर घराने की महारानी थी और आज उनका जन्मदिन है। और आज जन्मदिन है स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास का भी, जो बहुत ही मशहूर लोग हैं, मशहूर हैं कॉमेडी में, स्टैंड अप कॉमेडी में। और जो लोग चांद के अनुसार व्रत रखते हैं आज उनके लिए पूर्णिमा का दिन है, और दूध और फल खाया जाता है इस व्रत में दिन में, या फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाया जाता और शाम को वेजिटेरियन खाना खाया जाता है। और अब आपको बता दूं कि ये जो दोस्ताना फिल्म का गाना था जो आपने अभी सुना, दोस्ताना फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी और होती भी क्यों ना, राज खोसला जी का डायरेक्शन जो था, और लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी फ्लॉप फिल्मों का दौर चला, राज खोसला साहब टूट गए, शराब में डूब गए। और 9 जून 1991 9 जून 1991 पूरी तरह से इंडस्ट्री से नाराज़ और टूटे हुए राज खोसला साहब का देहांत हो गया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज खोसला जी को श्रद्धांजलि देते हुए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, रीविजिटिंग राज खोसला, ये बनी 2021 में। FTII जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके डायमंड जुबली के अवसर पर। तो आज आपके लिए जो गाने मैंने पेश किए राज खोसला साहब के, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले सप्ताह सुनील दत्त, नरगिस जी, नूतन जी और बीना राय जी और राज खोसला जी का जन्मदिन है, और मशहूर लोगों में नंदन नीलाखानी का जन्मदिन है अगले सप्ताह, और आज जैसे मैंने बताया अहल्या बाई होलकर का जन्मदिन है। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को आया है और मैं एक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें, और जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम गए हैं ड्रॉ में, और जो नाम 2 आए हैं वो हैं लव
और दूसरा नाम है इस्माइल। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ड्रॉ में भाग लेने के लिए। अगले सप्ताह फिर होगा ये क्विज और ड्रॉ, तो अगले सप्ताह आपको एक और मौका मिलेगा कतर है मेरा दिल कार्यक्रम के टिकट जीतने का। तो अब मुझे सुखदेव जसवाल को आगे दीजिए, और अंतिम गाना जो आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ वो है राज खोसला जी की सुपर हिट और राजेश खन्ना जी की सुपर हिट फिल्म दो रास्ते का ये बेहतरीन गाना। नमस्कार।